नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय

0: द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मूचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz वर आम्ही आकाशवाणीच्या धुळे केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोते, सकाळचे 6:05 झालीत। अर्चना हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत। सुरुवातीला ऐकूया रवींद्र साठे यांनी गायलेलं नीला सत्यनारायण यांचं गीत।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद

0: निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews

0: विधि को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
1: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही

0: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेझेंट्स एफएम 100.5 मेगाहर्ट्सवर आम्ही आकाशवाणीच्या धुळे केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोतेहो, सकाळचे 8:15 वाजलेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम भावसरगम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आप सभी का। यह है राजनीति फिल्म का गीत। मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें। प्रीतम का संगीत,

0: राजनीति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी 3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में।

0: कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर वर्ष से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज 6 जुलाई है, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का ये उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुई पाश्चर ने रेबीज के टीकेकरण का पहला सफल प्रयोग किया था। जूनोटिक रोगों के उदाहरण हैं रेबीज, बर्ड फ्लू, कोविड 19 और आदि आदि बीमारियां, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी वैज्ञानिक का अध्ययन जारी है। इससे बचाव के उपाय हैं पालतू पशुओं और बीमार पशुओं के तुरंत जांच कराना। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पशुओं से फैलने वाले रोगों से हम बचे रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, समय समय पर टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और सचेत रहें हमेशा।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, के बाद फिर से आपको गीत सुनवाएंगे।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद फिर स्वागत।
1: मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर्द।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की आवाज़ें थीं। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाँव में बैठने और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपने जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं, बल्कि देखभाल के उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। एक पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

पता लेडीज, फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है, सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: शिक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, वो मुझे याद आया कि तुम मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौट कर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर अशीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकाल। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई अनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी सब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस ज़माने में भी ज़्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफ़ी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज़्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही काम करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस ज़माने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज़ ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला टीला आगो हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सो बैतुला।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे। और आप अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहां पर आप को सारी पोस्ट मिल जाएंगी और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की उन सभी की पोस्ट भी आपको वहां मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहां मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और जो साथी फेसबुक पर ही हैं जिनका अकाउंट है वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है क्योंकि रुकना नहीं चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा, वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहां कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह

सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गईं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूं, लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोराजी की ओर चल पड़ा हूं। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना, यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है, या आपको किसने चलना सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर, बताना है किस फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफे आजमी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही, और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे जरूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारी एक साथी लिख रही है कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे एक और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है। संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो। श्लोक की वास्तविकता है बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है। जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहां कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं। कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारे एक और साथी का कहना है चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। से कर्मयोग काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज में गीत, कौन से फिल्म से।

मोहम्मद रफी की आवाज में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय, चलते चलते तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत उन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूं। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूं। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे। जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। मंजिल मिले या ना मिले, हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ न कुछ बताता है। वहीं हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है। चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पाँव में

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग

तो द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफर के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफर बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहां पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपने अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। वैसे हमारे साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी। वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हुई गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफर मिला वो जीवन में हम सफर बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक 5 तो कम से कम चलते ही है। और एक साथी कहने कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर

इजाजत दें जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफर में रखती है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, वहां के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कहने कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देखकर आनंद आया। वहीं हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चामुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनके बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया, हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं, इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: त्रिवेणी। श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई न कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना, मिलाना, आदर सम्मान का होना बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझसे

0: दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत जरूरी है। इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बरसों तक ये रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते बुआ चाचा भाई बहन मौसी मामा सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्योहार उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है, आज इनमें भी कमी आ गई है। या सब अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि शामिल होने में असमर्थता दिखाते हैं।
1: वो

अपना। दोस्तों, आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई संदेश, संवेदना प्रकट करना, बस दे दिया, उनका ये फर्ज पूरा हो गया। इनमें कितना अपनापन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से घर आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज पर, एक तार, टेलीग्राम, चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से बनाने लगे हैं।

कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन

0: एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक

0: स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को

0: बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदिनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: होगोरी होगोरी होगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, हम मीठे बहना, तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: दो बहनें, आज इस कहानी की पहली कड़ी।
1: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
2: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
1: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
2: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगे, शौहर की घुड़कियां खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे

0: भैया के बना दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर, तेरा शौहर अब बीए में होगा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होते पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेरी से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते?
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, अगर ये रुदाज सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, भला बताओ जरा? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला, ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई,
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो सवाल न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर, अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
0: सही कहती हो।
1: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
0: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती, ये कहां का इंसाफ है।

0: कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
1: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली।
0: तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे। हाँ,
2: 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
0: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन, व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
1: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
0: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे, इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ।
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग

0: यही तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांटकर देखना चाहिए, जैसा अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख
0: सकते,
1: ये भी करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है,
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, अपने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1000 या 2000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं,
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती, तो नहीं लगता है मतलब पैसे वाले की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि

0: बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना वो हम बिल्कुल
1: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा। सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
0: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है?
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में 3 मित्र जरूरी है, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन, पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर्स उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ 1/4 पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल
1: रखी है।
0: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं, यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
1: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने

0: तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी। तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते हैं तो देखो लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल। सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है।
0: पढ़िए, आप पढ़िए।
1: चलिए।

0: तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। दो कप काबुली चने रात भर भिगे हुए, दो प्याज बारीक कटे हुए, दो टमाटर पिसे हुए, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो तीन हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक या दो छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, एक चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, दो बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें, और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए, ए, ए, ए,

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: सेहत नामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर?
2: स्टूडियो

0: में आकर बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
0: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी है।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
0: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
0: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
0: और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं। और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवॉन्टेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है। आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: गाने के बाद डॉक्टर आशा लता आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीट।
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी।
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है, और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट,

0: एक्सरे एनालिसिस हो सकते हैं।
1: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
0: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका टिबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है कई बार, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CST जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: USG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करके छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%।
1: तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी।

0: उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, वाइटेक ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे
1: जी।
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
1: और विटामिन डी धूप से
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: हाँ
1: नहीं खाना चाहिए,
0: ट्रांसफैट की, हाँ
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर
1: वो फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी।
1: हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर,
1: हाँ फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है।
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाए।
1: हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे?
1: गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20 और 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के

एंडेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है।

0: नेचुरल चीज तो मेरे जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट एक्सरसाइज पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सीज का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से सर्जिकल प्रोसेस है
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक
1: जी। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना सपना,
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं, और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देके ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है,
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है, और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो परक्टली,
1: हाँ सीबीच, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में।
0: तो इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस, और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकेंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी?
1: हाँ नींद की कमी, डाइट, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो जाती है,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है, जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ खतरा होता है?
1: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, और इसका कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि

ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है, अखबारों में

0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
1: जी।
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका
1: जी।
0: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
1: यूरिन के रास्ते यूरिन पानी आता है ऐसा?
0: हाँ, वो अलग चीज है। यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी। हाँ, तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देखे वो क्लियर हो सकता है
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी,
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ,
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर।

0: के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल्फ परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसे थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। हर महीने में एक बार तो भी सेल्फ परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी
1: का, तो मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपएनएससी, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से
0: जी। कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं ये आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे। फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मीरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: बदल, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह

0: में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने। नीचे सुनिए शराबी फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अंजान और प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत बप्पी लाहिड़ी का।

0: किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कटी पतंग, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गाना यादों की बारात इस फिल्म से है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गाना है ये। महेंद्र कपूर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: तराने नए पुराने ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: तराने नए पुराने
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6, कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस श्रृंखला की अगली कड़ी यानी कि जो 7वीं कड़ी है वो कल सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है आपकी कसम। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में प्रहसन बस 2 मिनट, लेखक हैं मदन मिहारी शरणदीप और निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, रात 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेता परीक्षित सहनी पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा। ये थी रूपरेखा आज के शेष कार्यक्रमों की। लीजिए आप सुनिए कल यानी कि 7 जुलाई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदनवार और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 7, कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। सुबह 10 बजे पिटारा कार्यक्रम में सेहतनामा, सुनिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। दिन में 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 पर यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर कार्यक्रम आपके लिए होगा। दिन में 2 बजे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम और 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम, और रात 8 बजे का समय है हवा महल कार्यक्रम का। सुनिए झलकी मुंशी इतवारी लाल, इसके लेखक हैं नरेश मिश्रा और निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे का समय आपके लिए इस कार्यक्रम का होगा, और रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। रात 10 बजे छाया गीत कार्यक्रम, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी कल यानी कि 7 जुलाई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

संध्या रंजन कार्यक्रम में आपने ये गीत सुना। हम दोनों फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत जयदेव का। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये पनाह इस फिल्म का गाना।

गाना है। साधना सरगम और सारिका कपूर की आवाजें हैं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा ने इस गीत को लिखा है और इसकी धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

0: आज का संध्या रंजन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित रोनू मजुमदार विविध भारती के स्टूडियो में हैं और सुर लहरियां जैसे तैर रही हैं और हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं इनकी बातें और बांसुरी की तान। दादा, हमारे मन में एक बात आ रही है कि आपने बहुत सारे फिल्मी गानों में बांसुरी बजाई है
2: जी।
1: तो उन फिल्मी गीतों का हम क्यों न चर्चा करें।
2: जैसे मैं आर डी बर्मन के पास गया तो लव स्टोरी से तो मेरी एंट्री हो गई
1: जी जी।
2: तो उसके बाद अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती किशोरदा के साथ, और ऊंचे लोग तू मेरा क्या लागे ओ साथिया, जिम जिम जिम जिम जिम तारा, जिम जिम जिम जिम जिम तारा, ये गाने में भी मेरा सोलो है।
1: इसमें बांसुरी पर आप अगर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको तकलीफ देते चल रहे हैं।
2: मुखड़ा अंतरा तो याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुनाता हूँ।

0: वाह,
1: इसमें शुरू में फ्लूट का आलाप है। किशोरदा आते ही सिंगर बूथ की तरफ जाते थे, कहीं देखे बेगर।
0: अच्छा,
1: थोड़ा आगे गए और फिर पीछे मुड़ के मेरे पास आ गए। मुझे बोले कि अच्छा, मेरी प्रैक्टिस स्टूडियो में भी चलती रहती थी।
0: जी जी।
1: तो मैं अपना पीलू बजा रहा था, तो बोलते पीलू क्यों बजा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, तू पहाड़ी बजा पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: मैंने बोला अरे बड़ा अजीब आदमी है। तो मैं तो था बच्चा। बोले कि एक डेट उन्होंने पूछा, समझ लीजिए 25। 25 तारीख को तू फ्री है, मेरे साथ सन्मुखानंद में बजाएगा।
0: अच्छा
1: अच्छा, बच्चा ऐसा होता है कि उसको ये समझ नहीं होती कि बड़े लोगों को क्या नहीं कहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: आज का रोनू मजुमदार होता तो नहीं बोलता। मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया। अच्छा, थे तो पिता की उम्र के, मगर इंडस्ट्री में दादा दीदी ये चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राज जी, दिलीप साहब, रफी साहब, किशोरदा, ऐसे उसको संज्ञा दी जाती है। तो किशोर कुमार सुपरस्टार को मैंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाता हूँ।
0: ओह।

0: मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, स्टूडियो के अंदर ठीक है, कहाँ तो नाराज होके बोल सकते थे पंचम दास से, अरे ये बड़ा लड़का बदतमीज है, इसको निकालो बाहर। वो बजाएगा नहीं तो पूजा कैसे होगा है? देख मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है,
1: क्या बात है।
0: ऐसे थे हमारे किशोर दा, बोले मेरे जैसा कंजूस, उनको ये भी मालूम नहीं था कि वो भगवान जैसा गाते हैं।
1: जी जी जी,
0: ऐसा कोई गा ही नहीं सकता।
1: जी जी,
0: तो दुर्गा पूजा बंगालियों का होता है शिवाजी पार्क में, वो बंगाल क्लब का है, बंगाल क्लब के लिए वो गा रहे थे।
1: जी,
0: जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने तुरंत पांव पकड़ लिया, दादा मुझे माफ करिए मैं बजाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे किशोर दा।
1: जी जी,
0: तो किशोर दा के साथ मैं घर गया फिर गौरीकुंज, तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे, अपने माँ के, गौरी प्रसन्न गांगुली।
1: जी जी, अच्छा, उनकी माँ का नाम,
0: उनकी माँ का नाम, तो माँ के नाम से ही वो बंगला बनाया। फिर वहाँ पे चलती का नाम गाड़ी वाला, वो जो गाड़ी है वो वहाँ पे आज भी खड़ी है, वो एक एक समझिए ना, एक पुराने जमाने की याद ताजा करता है। तो अगर तुम ना होते, ऊंचे लोग, और एक गाने में लता जी याद करती है, जो लता जी मेरे साथ पीले कलर का फोन लेके जो खड़ी है, वो जो फोटो आप लोग देखते हैं बहुत फेमस जो फोटो मेरा है, जो मैं उनके जन्मदिन में हरदम पोस्ट करता हूँ।
1: जी जी,
0: तभी भी वो याद कर रही थी मेरे स्टूडियो में आके, ट्रायो डिजिटल मेरा स्टूडियो है
1: जी।
0: तो वहां आई तो बोल रही थी कि तूने जमीन आसमान में जो फ्लूट बजाया था वो आज भी याद आता है रोनू, आजकल ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं होता। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी, खुद के लिए नहीं, संगीत के लिए, क्या ये जमाना है, क्या हो रहा है, ये कटपेस से कैसे चलेगा। मैं आपको वो पीस सुना रहा हूँ जो जमीन आसमान का में मैंने,
1: स्वागत
0: देखिए अजीत भाई, ये वही है बांसुरी वाली बात की रे को साकर के मुझे बजाना पड़ेगा, तो आप सिर्फ बाया बजा देंगे इसमें।

0: वाह,
1: मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा दीदी ने इसको गाया है, प्लीज
0: ये गाना
1: जरा आप श्रोताओं को सुनवा दीजिए, फिर कुछ बातें मैं अगले एपिसोड में बोलूंगा
0: जी। सुनवाते हैं यही गीत।

0: ये गाना भी अद्भुत है, बड़ी ऊंचे सुर में लता दीदी ले जाती हैं और
1: जी
0: आपकी बांसुरी की तान तो बिल्कुल मोहित कर देती है।
1: तारा रा रा तारा रा रा ता ता ता ता ता, मतलब इतना ऊपर के स्वरों को दीदी उसमें भी एक मेलोडी को कायम रखती थी।
0: जी जी,
1: कर्कशता से कोसों दूर, कर्कशता तो शायद उनको स्पेलिंग भी उसका व्याकरण भी उनको मालूम
0: नहीं। सुर कोकिला तभी तो कहा
1: जाता है, स्वर कोकिला। माँ सरस्वती गा रही है, क्या बात करने का, हजार राहें मैंने बजाया। मुझे एक बात कहनी है जाने से पहले, शशि जी था उस दिन, शशि कपूर
0: जी
1: और राखी जी जो इस फिल्म में है, ये दोनों उस दिन मौजूद थे।
0: अरे वाह,
1: स्टूडियो में। और शशि कपूर जी जिस तरीके से, अरे क्या बात है, क्या बांसुरी बजाते हो बंगाली बाबू, तो जैसे जिंदा दिल वो फिल्मों में दिखते हैं, जितनी खूबसूरत उनकी हंसी, इतने ही खूबसूरत वो ऑफ द स्क्रीन भी वैसे ही थे। वो और देव साहब, तो देवानंद के साथ भी मैंने काम किया
0: जी।
1: आप सोचते होंगे इतनी तो मेरी उम्र नहीं है
0: जी।
1: कि
0: नहीं।
1: मैं देवानंद के साथ मैंने काम किया है
0: जी।
1: आप सोचिए।
0: तो दादा, ये जो मुलाकात है आपकी इन लोगों से, इन मुलाकातों का भी जिक्र करें, लेकिन अब आज तो हम यहाँ पर
1: अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बातें बताऊंगा
0: जी। तो जी। अब आज श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: से चमकता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का
0: मगर कुछ
2: संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित
3: बाबा।
4: आना 3,000
3: ते कशाला?
4: माझा पॉकेट मनी।
3: अरे आता फक्त 2,000 कॅश आहेत।
4: अहो बाबा, बुलेट ट्रेनच्या जमान्यामध्ये बैलगाडी चालवत आहात, डिजिटल पेमेंट वापरा।
3: है?
4: है नाही हो, सरळ UPI ने पेमेंट करा, सोपं आहे।
3: अरे वा, मलाही शिकव आणि तुझे 1,000 घेऊन जा,
4: तुमचा मोबाईल द्या,
3: घे घे।
5: भारत डिजिटल पेमेंट करतो आहे,
6: प्रत्येक देवाणघेवाण आता सुलभ आहे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। पहला जो गीत है ये केदारनाथ फिल्म का गाना, देवनेगी की आवाज में अमिता भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रोबोट फिल्म का गाना। एआर रहमान, काश एंड क्रिसि और सुजैन की आवाजें हैं, स्वानंद किरकिरे के बोल और संगीत है एआर रहमान का।

ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लव यात्री इस फिल्म का गाना आतिफ असलम की आवाज में, मनोज मुंतशिर, शब्बीर अहमद और अराफात महमूद का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए रॉय फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में। अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने इस गाने को लिखा, संगीत अंकित तिवारी का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे

0: स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक

0: पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना मेरे सनम, इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि

0: मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है लाट साहेब फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभिमान फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गाना। आवाज़ मोहम्मद रफी की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

एक मुसाफिर एक हसीना इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीतकार ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम लाल पत्थर।

0: लाल पत्थर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जद तकिए ओए अपने अंदर, जद जद तकिए अपने तो शर्माइए, अपने तो शर्माइए।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माता जी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मेरे पिताजी और माता जी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में,

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में खत्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस जमाने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि जिंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौट कर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार

साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तू गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असित सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है, पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे। वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है, जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम है आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ

0: अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Syama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi